मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

दो आंखें बारह हाथ, इस फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ आपने भक्ति भाव से जुड़ा गीत सुना। और अब अगला गीत ये कहता है कि जब आप बहुत दुखी हो जाते हैं, अंतर मन उसे पुकार उठता है और फिर उसको आना ही पड़ता है।

बहुत बार हम भी जब दुनिया के कर्म करते हुए मन को दुखी देखते हैं तो उसे ही पुकारते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी विनती सुनने वाला उसके अलावा कोई भी नहीं।

भोर सुहानी कार्यक्रम का सफर अब यहीं तक। मुझे यानी अपनी दोस्त वंदना चौक को दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम को संपन्न करने की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी

0: ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi underlined the need for clear accountability, faster response mechanisms,

हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एफएम रेनबो 101.9 विद मी योर आरजे लहरी। यू आर लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब। आज है जून 25th, तो क्या कुछ स्पेशल है? हाँ है, हर डेट कैलेंडर में सिर्फ एक नंबर नहीं होती। कुछ डेट्स हमें सेलिब्रेट करना सिखाती है और कुछ डेट्स हमें हिस्ट्री याद दिलाती है और कुछ डेट हमें डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस समझाती है। आज हम बात करने वाले हैं संविधान हत्या दिवस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे, है ना, ये नाम का मतलब क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है और आज के जनरेशन को इसे क्या सीखना चाहिए। डोंट वरी, वी विल लर्न अबाउट इट टुगेदर। सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9 विद मी योर आरजे लहरी। Now let us listen to a wonderful song followed by a short commercial spot.

Welcome back, listeners. You're listening to Namaste Hello Adab on FM Rainbow 101.9 with me, your RJ Lahiri. Ab aate hai June 25th par. What actually happened on this day? In 1975, there was an emergency declared in India. Emergency constitution mein pehle se available provision tha. This was for extraordinary situations like if there is anything really necessary, then this emergency had to be declared. But in 1975 se 1977 tak ka period, Indian history mein bahut important chapter mana jata hai. Us dauran democracy, freedom aur constitutional rights ke bare mein desh bhar mein kafi discussions hui. Aaj jab hum संविधान हत्या दिवस के बारे में बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव किसी को ब्लेम करना नहीं है, लेकिन हमारी ऑब्जेक्टिव ये है कि हिस्ट्री को समझना, बिकॉज हिस्ट्री में सिर्फ पास्ट नहीं बताती, हिस्ट्री हमें फ्यूचर के लिए भी लेसन्स देती है. सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9 विद मी योर आरजे लहरी. आफ्टर दिस सॉन्ग विल लर्न मोर अबाउट व्हाट आवर हिस्ट्री हैड टॉट अस on the occasion of Samvidhan Hatya Divas.

Welcome back, listeners. You're listening to Namaste Hello Adab on FM Rainbow 101.9 and it's 10:31 and studio clock. Let me ask you an interesting question. What is democracy? Is it only elections, voting? No. Democracy ka matlab ye hai ki freedom to express opinions, respect for different viewpoints, rule of law, equality before law, और सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन. डेमोक्रेसी अंटे मन ओट मात्रमे कादु, मन वॉइस की वैल्यू उंडडम, मन राइट्स नी प्रोटेक्ट चेयडम, मन रेस्पॉन्सिबिलिटीज नी फुलफिल चेयडम, इदी डेमोक्रेसी योक्क ब्यूटी. सो इप्पुडु मनं डेमोक्रेसी अंटे एंटो तेलुसुकुन्नां कदा. नेक्स्ट ओक ब्यूटिफुल सांग तर्वात असलु वीटि वल्ल मन जनरेशन एं नेर्चुकोबोतुंदि अनेदि तेलुसुकुन्नां. So stay tuned to FM Rainbow 101.9 with me, your RJ Lahiri.

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत

0: काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जाँच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Venezuelan President Delcy Rodriguez has declared a state of emergency in the country following back-to-back earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 caused multiple buildings collapse in Caracas.

बात करी, दैट फिल्म वॉज अ गेम चेंजर. द सॉन्ग्स, द इमोशंस, द परफॉर्मेंसेस, एवरीथिंग कनेक्टेड विद द ऑडियंस. करिश्मा वॉज इन जस्ट लुकिंग ग्लैमरस ऑन स्क्रीन, शी वॉज ग्रोइंग एज एन एक्टर विद एवरी फिल्म. एवरीवेयर यू लुक्ड, पीपल वर टॉकिंग अबाउट हर मूवीज, हर आउटफिट्स एंड हर सॉन्ग्स. एंड टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स, हियर्स वन दैट स्टिल ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज. Stay tuned to FM Rainbow 101.9 with me, your RJ Lahiri.

0: on Jashne Hyderabad every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
1: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
2: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.
3: FM Rainbow 101.9.
4: Welcome back, listeners. You're listening to FM Rainbow 101.9 with me, your RJ Lahiri. In our today's Hello Rainbow phone-ins, we have chosen a topic that is, what is your favorite book? Aapki favorite kitab kya hai? Aur agar aapki padhne ki aadat hai, to hamein शेयर कीजिए कि आपके फेवरेट किताब क्या है. तो वी हैव कॉलर्स, लेट अस. हेलो.
5: हेलो, गुड आफ्टरनून. आदाब लहरी जी.
4: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम?
5: जी, शेर खान बोल रहा हूँ, तालाब कट्टा अमन नगर से. और सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को आपको मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब. और अल्लाह से दुआ करता हूँ आप सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे हमेशा.
4: सर बताइए, सर आपकी फेवरेट किताब क्या है और आपको आदत है कि नहीं ये किताब पढ़ने की?
5: जी मैडम, मेरी फेवरेट किताब है हमारी कुरान शरीफ, जो आसमानी किताब है. और मैं बचपन में ब्लाइंड हो गया था 3-4 साल की उम्र में, तो मुझे उसके बाद हमारे उस्ताद ने ये किताब जो पढ़ाई, तो बाद में मैं जबानी याद कर लिया उसको. और उसमें अल्लाह ताला ने सारे हिदायत के फैसले फरमाए हैं, सिराते मुस्तकीम पे चलने का, सीधे अच्छे राह पे चलने का, अच्छे कर्म करने का हुक्म दिया है. और उसमें जो बातें बताई गई है, अगर उस पर मैं अमल कर लूंगा तो मेरा सारा दुनिया और आखिरत में जो है कामयाब हो जाऊंगा. तो मुझे ये आदत पड़ गई उसको सुन के, उसको पढ़ के, उस पर अमल करना. जब भी मुझे कोई तकलीफ, बीमारी, कुछ भी तकलीफ लगती है तो मैं उसकी तिलावत कर लेता हूँ और अपने आप पे दम कर लेता हूँ या पानी दम करके पीता हूँ, तो मुझे हमेशा के लिए नफा हो जाता है. और वही किताब में अल्लाह ने हिदायत के फैसले फरमाए हैं और सारा नफा उसी में रखा है. दूसरी कोई चीज, कोई दौलत, कोई चीज काम में नहीं आने वाली है. वही चीज अगर पढ़ के हम उस पर अमल करेंगे, सारी इंसानियत में फैलाएंगे, इंसानों के साथ अच्छा हुस्ने सलूक करेंगे, सबके साथ मिलके रहेंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे, तो ही हमको कामयाबी मिलेंगी. बस यही मेरी फेवरेट किताब है, कलाम पाक हमारी.
4: थैंक यू, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग विद अस. थैंक यू सर. सो दैट वाज हिज फेवरेट बुक कुरान. लेट अस गेट बैक टू द जॉर्ज ऑरवेल्स मोस्ट फेमस बुक्स. And one of the famous book is Animal Farm. Like I told you earlier, Animal Farm, now on the surface it looks like a simple story about animals living on a farm. Sounds harmless, right? But that's where Orwell's genius comes in. The animals revolt against their human owner because they want equality and freedom. Lekin dheere dheere wahi leaders power ka misuse karne lagte hai. The story becomes a powerful commentary on corruption and how power can change people. One of the most famous lines from the book is often paraphrased as, "All animals are equal, but some animals are more equal than others." Authority vachinappudu values ni marchipokoddu ane message strong ga untundi. One important lesson? Yes, question leaders, but also stay aware of what happens after change arrives. Stadium to FM Rainbow 101.9. You can call us on 0402323-0030 and 0402323-4821 or 0402970-4715 and let us know what is your favorite book or a book which made you stop and think for a while. Also, a book which made you get a habit of reading books. Stadium to FM Rainbow. After this, we have a commercial spot and a beautiful song. Then we'll get connect with few more callers.
6: Hello. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ని పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి.

0: FM Rainbow 101.9. ఇప్పుడు వినండి సందేశ్ టు సోల్జర్స్.
1: पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है. अच्छा। तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे. तो जहां जहां पे यूनिट रही, जहां जहां पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहां वहां पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते. अच्छा। रहे जी. तो डिफिकल्ट, इट इज इंडीड डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से.
2: अच्छा।
1: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में. तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट टेन्योर.
2: तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी जी, देयर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस. एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं. तो एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट. तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है.
2: बिल्कुल.
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और चांद जानवरों को देखना, ये सब चीजें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती है कुछ टाइम के लिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ व्हाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है. तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं. ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो चीज एक थोड़ा सा उसकी अलग सैंक्टिटी होती है. बट हाँ, फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस. बड़ा ही अलग तरीके का.
2: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं. और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए और कब उनको VSM से नवाजा गया. तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर. आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में. और आप हमें SMS, आप हमें WhatsApp मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर. और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं. हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से. नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2342-1085.

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफ़ी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी,
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहाँ पे आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने ही सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहाँ पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे हमने सैनिक स्कूल को स्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहां पे।
0: अच्छा।
1: सो एक बार एक तो एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अफसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे, मतलब उन्हीं के

0: मुझे धोनी की वो टेबल तक आई, बट इट वॉज अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में. और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था. तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था.
1: अच्छा
0: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमई भी जा रही हैं. तो ये
1: अच्छा
0: अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था एक्चुअली.
1: बिल्कुल, ये तो
0: जी
1: अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो, और पहला स्कूल खड़ा करने में, तो
0: जी
1: क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? क्या
0: जी
1: वो चैलेंजेस फिर से वही सब
0: जी
1: दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
0: नहीं, एक बार चीज़ों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीज़ें आसान भी हो जाती हैं.
1: जी
0: अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस. बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहाँ पे हर घर में फौजी है बेसिकली.
1: अच्छा
0: तो अगर हम निकालें कि ऑन एन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले
1: अच्छा
0: में सबसे ज़्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में. तो यहाँ पे बच्चों को, उन क्लास छठे में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल
1: जी
0: अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर
1: बिल्कुल
0: में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी. ऐसे बच्चों को स्कूल में लाके उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे
1: जी
0: अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे
1: मतलब
0: है.
1: पूरा लाइफ
0: तो
1: स्टाइल आप
0: जी, तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को स्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल, तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं.
1: ठीक है
0: फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं. तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मेस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन और सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर, मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे
1: जी
0: एंड आई शुड वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके. तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग. और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि
1: अच्छा
0: झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसिस में बनवा बना कन्वर्ट कर दिया. इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना
1: अच्छा
0: सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देख के या मंत्रमुग्ध जाएंगे.
1: तो
0: सो
1: जबकि उस पर बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है,
0: जी
1: बड़ा गर्म
0: जी
1: इलाका
0: ओ
1: है,
0: जी
1: तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो
0: जी
1: ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही इसमें, कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा
0: जी
1: कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके
0: जी
1: साथ, तो
0: जी
1: क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल. बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे. हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे. देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई
0: एक
1: थी वो।
0: बड़ी टीम हो गई. द इंटायर ऑब्जेक्टिव वॉज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे
1: जी
0: सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में. टू
1: बिल्कुल
0: इनकलकेट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बींग ना, वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम. एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूं कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं,
1: अच्छा
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पर गई थी. तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे जाके.
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है, और
0: जी
1: वो फल फूल रहा है, सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना,
0: जी
1: वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे, और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं. उसके साथ
1: अच्छा
0: साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ. तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैंने पर 25 एकड़ से के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को
1: जी
0: शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं.
1: बस
0: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट, आपके
1: ओके
0: आँख कान नाक सब कुछ होते हैं. तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है. तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना, कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके,
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए
0: हमेशा के
1: एक
0: लिए.
1: बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा? कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां लगा कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं साहब, चैलेंजेस बहुत आए बट दिमाग में ये चीज़ बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये
1: करना
0: एक
1: है
0: टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, ठीक है, हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीज़ें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक,
1: हमेशा के लिए वो
0: हमेशा
1: बन
0: के
1: गया, और वो
0: लिए.
1: हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके
0: जी
1: आते
0: जी
1: रहेंगे।
0: जी जी
1: तो ये
0: जी
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
0: मैं बिल्कुल आप बात मैं मानता हूँ आपकी बात. ये सबसे सेटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज़ थी कि आप

0: उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद, बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे
0: जी
1: जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको VSM से सम्मानित किया गया,
0: जी
1: तो वो जो मोमेंट था।
0: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से, अपने दम से किया पूरा का पूरा।
1: जी
0: हाँ, बस ये था कि तीन तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ, जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने
1: जी
0: इसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ए ट्रेमेंडस
1: सर, ये
0: अचीवमेंट।
1: आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था।
0: जी
1: आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक एक एक अलग सी चीज है,
0: जी
1: बड़ा
0: जी
1: इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें।
0: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है, तो
1: जी
0: अपने आप में बस सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड
1: बिल्कुल
0: दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो
1: बिल्कुल
0: अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज़ से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: सर, एक चीज यहां पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
0: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
1: ठीक है,
0: जिसको कि NTA कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या पांचवें में
1: ओके,
0: हैं,
1: जी
0: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन,
1: ओके,
0: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
1: अच्छा,
0: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई करें, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य
1: जी
0: में अप्लाई करें, तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं
1: ओके
0: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती हैं, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो
1: जी
0: ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहाँ पर दाखिला होता है। पर
1: जी
0: ये बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं,
1: जी
0: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की
1: डिसिप्लिन
0: भावना डाली जाती है, ये
1: बिल्कुल
0: जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर अगर
1: बिल्कुल,
0: वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग
1: या
0: महत्वाकांक्षाएं हो
1: जी
0: सकती हैं,
1: करियर को लेकर
0: चॉइस हो
1: के,
0: सकती हैं,
1: जी
0: पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
1: यानी
0: जाता
1: कि
0: है।
1: बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो
0: जी
1: मजबूत हो जाते
0: बिल्कुल
1: हैं, और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही
0: बिल्कुल,
1: ऑर्गेनाइज हो जाता
0: यस
1: है।
0: यस
1: तो सर
0: यस
1: इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
0: यस यस अगर गूगल करेंगे तो सैनिक स्कूल एडमिशंस की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल
1: ठीक है
0: सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है,
1: ठीक
0: जिसपे
1: है
0: कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
1: ओके तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा
0: जी
1: प्रोसीजर सामने
0: जी
1: आ जाएगा
0: जी
1: उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो 5वीं पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो, या
0: या जो
1: जो
0: पास आउट हो चुके
1: हो
0: हैं,
1: चुके हैं
0: हाँ,
1: वो,
0: 12 साल की लिमिट होती है,
1: 12 साल की
0: तो दस
1: लिमिट
0: से
1: है।
0: बारह के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
1: ओके हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी, और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहें हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आवर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई बो माय हैट टू देम माय सेल्फ। अंजलि लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 011-2342-1085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए

0: 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं, तो
1: ओके
0: वहां पे एज अ रजिस्ट्रार माई रोल वॉज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे डीएमएमसीएच एमडीएमएस के जो पाठ्यक्रम हैं, प्लस जो हमारे
1: जी
0: यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका
1: अच्छा
0: प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
1: ओके
0: तो
1: तो सर ये
0: आई
1: बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एक एकेडमिक्स में आकर के उस चीज को
0: एब्सोल्युटली
1: संभालना।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम ए इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड, से एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो
1: जी
0: उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमाटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन
1: जी
0: साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में
1: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो।
0: जी। बट हाँ, 3 साल 4 साल हो गए वहां पे। उन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है,
1: ओके
0: एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में।
1: ओके
0: और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
1: अच्छा
0: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा, ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी करी काफी
1: जी
0: करी,
1: जी
0: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया
1: जी
0: गया।
1: तो सर अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
0: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है, तो लखनऊ वाला पीजीआई है, दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट,
1: ठीक है
0: एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट
1: जी
0: एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडीज भी हैं जो कि
1: ओके
0: सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग
1: अच्छा
0: एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं,
1: जी
0: जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री,
1: जी
0: ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
1: सर जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
0: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी होता है,
1: अच्छा
0: सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब
1: ओके
0: संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहां पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने
1: जी
0: जा रहे हैं,
1: सर,
0: जहां
1: अगर हम एक लेमेन के हिसाब से समझें या
0: जी
1: आम
0: जी जी
1: आम भाषा के हिसाब से,
0: जी
1: तो उसको कैसे हम इसको
0: जी
1: समझेंगे कि ये कौन कौन से आप
0: हाँ,
1: जो जो ये बता रहे हैं आप इनको?
0: संस्थान में जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है, कि
1: अच्छा
0: जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे
1: ओके
0: कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई,
1: अच्छा मतलब जो
0: ट्रीटमेंट्स हो
1: बहुत
0: गए,
1: ही सेंसिटिव या बहुत ही
0: यस,
1: गंभीर
0: जेनेटिक
1: वाले।
0: ट्रीटमेंट्स हो गए,
1: अच्छा
0: तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, उसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे
1: अच्छा
0: किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीज़ों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं वहाँ पे, डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं,
1: जी
0: एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
1: ओके
0: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये यह है कि भाई जो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे,
1: जी
0: उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा।
1: सर, लेकिन एक चीज यहां पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे
0: जी
1: बातचीत करते
0: जी
1: हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में आए होंगे,
0: जी
1: ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इनका
0: जी
1: इतने हाइली सेंसिटिव
0: जी
1: जो
0: जी
1: ट्रीटमेंट्स आपने बताए
0: जी
1: उनको और बेहतर से
0: देखिए सर,
1: बेहतर बनाना।
0: दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माय ओन डिस्पोजल।
1: जी
0: यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, केपेबिलिटीज और अलग अलग
1: अपने अपने
0: इन्वायरमेंट से
1: काम
0: आती है,
1: कर रही
0: तो
1: है।
0: यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो
1: जी
0: अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है,
1: बिल्कुल
0: ज्यादा लोग भी हैं, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहां पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे, जंगल में एक तरीके
1: अच्छा
0: से, जहां पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहां पे, जहां फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे। तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द
1: जी
0: फैक्ट इज कि यस, बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज वॉट कीप्स मी गोइंग।
1: जी
0: जी
1: तो

0: लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
1: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट
0: जी
1: टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू।
0: एग्जैक्टली
1: तो भाई टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा,
0: बिल्कुल
1: रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
0: तो बिल्कुल, वो
1: जी
0: जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थकते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा
1: फिर
0: ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं।
1: आगे बढ़ते हैं।
0: सर,
1: बिल्कुल
0: इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रिस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया? क्योंकि ये भी एक अलग, एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
1: जी, देखिए नर्सिंग कॉलेज एक, नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की।
0: ओके
1: अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे।
0: ठीक,
1: डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी
0: बिल्कुल
1: करनी है, बट उसके
0: जी
1: बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, बट उसके
0: जी
1: अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया,
0: जी
1: और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहाँ पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहाँ पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92, एंड
0: ओके
1: पीजीआई वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए और बताइए कैसे साहब कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो
0: तो
1: ये
0: ये
1: अपने आप
0: भी
1: में
0: बहुत बड़ा अपने आप
1: जी
0: में
1: जी
0: अचीवमेंट
1: जी
0: था,
1: जी
0: और जाहिर है ये बहुत टफ भी रहा होगा। तो
1: हाँ,
0: इसमें इसमें फिर किस तरीके का आपको?
1: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट
0: जी
1: हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और
0: जी
1: जो जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है। तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट, एंड इट इट केम टू अ लेवल।
0: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से, मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको
1: जी
0: करना,
1: जी
0: तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा
1: यस
0: होगा।
1: रिस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैग कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं,
0: जी
1: जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं,
0: ठीक ठीक
1: और
0: ठीक
1: कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें। दैट इज वेरी वेरी
0: तो
1: इंपॉर्टेंट।
0: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ
1: जी
0: पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो
1: जी
0: ट्रेनिंग थी,
1: जी
0: वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई? उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, कि आप ये
1: बिल्कुल
0: सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, इतने
1: बिल्कुल
0: ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए?
1: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको
0: जी
1: अपनी टीम का हिस्सा बनाएं। देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं,
0: बिल्कुल
1: हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे
0: जी
1: उसको सिस्टम में ज्यादा ज्यादा ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेकर चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
0: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं, जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं, तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
1: जीवन शैली है
0: जीवन शैली है, वो
1: जी,
0: एक लाइफ
1: इट्स अ वे
0: स्टाइल है
1: ऑफ
0: जो
1: लाइफ,
0: बिल्कुल
1: इट्स
0: अलग
1: अ
0: है
1: वे
0: वो,
1: ऑफ लाइफ,
0: और
1: यस
0: बहुत ही स्पेशल है मैं
1: एब्सोल्युटली
0: समझता हूँ।
1: एब्सोल्युटली
0: तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए, कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें, ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें, और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के भी एक
1: जी
0: जज्बा पैदा हो।
1: जी
0: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं?
1: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेस आर स्ट्रांग इनफ, सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है, वो
0: जी
1: शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि
0: जी
1: फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर आर सो मेनी एप्लीकेंट्स,
0: जी
1: 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक एंथुसियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाएं,
0: सर्विस
1: नेवी
0: दे,
1: में जा पाएं, एयरफोर्स में जा पाएं। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड वी हैव अ लॉट ऑफ यंग

0: पीपल। हाँ ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो
1: जी
0: बरकरार रहे,
1: बरकरार रहे,
0: तो वो एक
1: वो
0: बहुत
1: जोश और जज्बा
0: बहुत
1: और देशभक्ति
0: वो
1: की जो भावना
0: जज्बा।
1: है वो बरकरार
0: एग्जैक्टली
1: रहनी चाहिए।
0: एग्जैक्टली
1: सर एक
0: एग्जैक्टली
1: चीज यहां भी बताएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जैसे आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसी,
0: जी।
1: तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
0: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो। तो
1: अच्छा
0: एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है। तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ
1: जी
0: सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
1: अच्छा
0: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में, और वो अपना एनसीसी का 12th आते आते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है, और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपेयर करने से छूट मिल जाती है।
1: अच्छा
0: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी। तो
1: ओके
0: एग्जाम आपको एनसीसी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपेयर करने की छूट मिल जाती है। यू हैव टू अपियर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी। एसएसबी आपने पास कर लिया
1: अच्छा
0: तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हम मुझे मुझे लगता है कि एनसीसी को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए, और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में
1: एग्जैक्टली
0: इंक्लूड कर सकते हैं।
1: कम से कम उनके
0: जी
1: अंदर वो
0: जी
1: चीज, वो
0: राष्ट्रीय
1: जज्बा, वो
0: भावना और वो
1: भावना
0: राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट ना।
1: अपहोल्ड, बिल्कुल
0: यस
1: बिल्कुल, वो
0: यस
1: चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए और
0: बहुत
1: उसके अंदर वो जोश और जज्बा और
0: जी
1: देश देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि
0: माध्यम
1: हाँ
0: होता
1: भाई
0: है।
1: क्यों वो
0: जी
1: अपने देश से मोहब्बत करता है और वो क्यों
0: बिल्कुल
1: उस पर जान निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।
0: जी
1: सर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे, और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जैसे जैसे
0: जी
1: अब आगे बढ़ रहा है तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो
0: जी
1: क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड
0: जी
1: किया जा रहा है उसको।
0: जी
1: तो
0: जी बिल्कुल
1: यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में, और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें।
0: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं।
1: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी वीएसएम। आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेडियो संदेश सोल्जर्स शाहिद के साथ, और ये हमारे आज गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की पसंद का ट्रैक आप भी एंजॉय करें। और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज गेस्ट से, 9868107070 नंबर है हमारा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीजों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, वो हमेशा चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड अ टेक्नोलॉजी, दैट यू कैन नॉट नेगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीजों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटाबेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीजों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है
0: जी।
1: तो आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी।
1: AI विल
0: अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर
1: जी
0: उसको वो
1: जी
0: एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को। लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद
1: ये
0: तक,
1: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है
0: जी,
1: वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और
0: अच्छा,
1: स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि दे विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है, हम उसके और पास पहुंच सकते हैं। अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, AI पर हमने बात की, और AI तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में
1: जी।
0: हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम BK दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी जी जी
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता।
1: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
0: जी।
1: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
0: जी।
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम NTA कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस, वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को के अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इंफॉर्मेशन।
0: ओके
1: जी,
0: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड RJ सर, जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी। आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फियरलेसली सर्विस टू आवर नेशन। आई गिव रिस्पेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट माई सेल्फ शंकर लोड फ्रॉम गोमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड। वंदे मातरम, भारत माता की जय,
1: भारत माता की जय।
0: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं। लेकिन हम सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है।

0: सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम
1: जी
0: उसी जिंदगी में लाइफस्टाइल में,
1: जी
0: तो वो सोशल मीडिया के भी काफी काफी हद तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं वो, आपने अपने तौर पर जो चीज़ें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा।
1: जी जी देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है, जिसके
0: जी
1: पॉजिटिव भी हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है,
0: जी
1: अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं,
0: जी
1: बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है। ये तो एक
0: बिल्कुल
1: हाँ ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से।
0: जी
1: तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।
0: ओके
1: तो यही क्लास 12th पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी
0: जी
1: फोन पे ही इनका इनका फोन का एडिक्शन है। यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं।
0: जी
1: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं 5 लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम
0: अपने अपने
1: पे,
0: फोन पर वो
1: या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पर लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी
0: एग्जैक्टली
1: हिल रही
0: मैं
1: है बस
0: वही पूछने
1: खाली।
0: वाला था सर, ये
1: जी
0: रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो
1: जी
0: चुके हैं
1: जी
0: लोग,
1: जी
0: इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचें इससे।
1: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है। तो जिन जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया
0: बैन
1: है,
0: किए हैं जी
1: दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
0: बिल्कुल
1: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो
0: जी
1: ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही। आप
0: एग्जैक्टली
1: जैसे
0: आपने
1: मैंने
0: सही
1: पहले
0: बताया
1: बोला,
0: जी
1: इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीजों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर
0: जी
1: निकल के
0: जी
1: आने
0: जी
1: में
0: जी
1: बड़ी
0: जी
1: तकलीफ हो रही है।
0: सर एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही
1: जी
0: एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है,
1: जी जी
0: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता।
1: जी
0: तो इससे बचने का कोई तरीका, जो क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं 12th पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है।
1: देखिए साहब, ये बहुत सबसे ज़रूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए
0: जी
1: कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज़ मोबाइल और हर चीज़ लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, किताबें भी ज़रूरी हैं।
0: किताबें जो
1: देखिए
0: है
1: साहब, आप
0: ऑनलाइन अगर आ गई तो उसका क्या कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं।
1: एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें
0: जी
1: पढ़ते मिलते थे,
0: बिल्कुल
1: मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन काफ़ी कम हो गया है। तो दे द टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा
0: जी
1: सकते दूर उनसे, बट येस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है।
0: ये बहुत जरूरी है।
1: जी
0: और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर
1: जी
0: जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस
1: हाँ
0: किया है,
1: जी
0: और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि
1: देखिए
0: उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए।
1: देखिए फौज में, आर्मी में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं कि
0: अच्छा
1: किस तरीके से दूर रहना है। देखिए फौज में बहुत सारी चीज़ें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे
0: जी
1: इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए, तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई
0: अच्छा
1: कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
0: अच्छा मतलब सोशल मीडिया अकाउंट
1: यस,
0: भी
1: अकाउंट
0: नहीं
1: भी
0: बना सकते
1: डिलीट
0: हैं।
1: कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए
0: अच्छा
1: हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है। आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इन चीज़ों से।
0: ओके
1: प्लस आपको पता ही है कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी ईविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत जरूरी है।
0: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
1: छूट नहीं पा रहा है
0: तो
1: लोग।
0: क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए
1: देखिए कुछ चीज़ें
0: जब
1: तो
0: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं तब।
1: जी जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीज़ें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए।

0: ओके कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है. प्रॉब्ली दे वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी. अदरवाइज तो इस चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर में इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों.
1: जी, तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही. आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही मोटिवेटिंग है. और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जिससे सुन रहे होंगे
0: जी
1: उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की.
0: थैंक यू सो
1: तो
0: मच.
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप. और बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू
1: आपके
0: सो
1: आने के
0: मच
1: लिए.
0: जी.
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे. कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM रेनबो मेगा हर्ट्स पर। स्टोरी की घड़ी में इस वक्त रात के 9:30 और 11 सेकेंड्स हो रहे हैं और अब पेश है उर्दू प्रोग्राम नहरंग।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 MHz पर। सामिन, उर्दू प्रोग्राम नारंग की बस में आप सभी का दिली खैर मकदम है और आपकी खिदमत में हमारा पुरखलोस सलाम। सामिन कराम, आज की इस बज़्म को हमने सजाया है हरफ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश होगी मोहम्मद अजमतुल्ला खान की, और मुहर्रमुल हराम के इस माह में आप समात करेंगे इसके इस मद्देनज़र में खसूसी तकरीर वाक़ियाते 9 मुहर्रम। तहरीर व पेशकश होगी सैयद नदीम अख्तर सैती की, और गीत सुरीले गाते जा भी शामिल बज़्म रहेंगे। और बज़्म के आखिर में आप समात करेंगे पयाम शब, पेशकश होगी नदीम अख्तर जैदी की। सामिन इकराम, बिला ताखीर हम बज़्म का आगाज़ करते हैं हरफ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश है मोहम्मद अजमतुल्ला खान की, आइए सुने।

कमांडर ने सख्ती से मना किया था। एक झगड़ा हुआ जिसमें बरेर ने चीख कर कहा कि शर्मनाक है कि इसे और इसके दोस्तों को पानी पीने की इजाज़त दी जाए, लेकिन रसूलल्लाह के नवासे और उनके छोटे बच्चों को मना किया गया। एक तीर ने चमड़े के थैले में सुराख किया और इसे बरेर के गले में लगा दिया। कैंप में शदीद बहसें सुनी गईं और फौरन इमाम हुसैन ने अपने चंद दोस्तों से बरेर को बचाने के लिए कहा। बहुत से लोगों को इनके करीब आते देखकर इसहाक के आदमी दब गए कि कहीं खून खराबा न हो। बरेर ने फख्र से चमड़े का थैला नीचे रखा और कैंप में मौजूद बच्चों से पीने को कहा। हंसते खेलते बच्चों के बेचैन हुजूम ने बर्तन को परेशान कर दिया और कुछ ही देर में पानी बह निकला और सूखी जमीन में जब्ज हो गया। बरेर को इस बात का गम था कि जान को खतरे में लाया गया पानी इमाम हुसैन के कैंप में बच्चों के प्यासे गलों से नहीं गुजर सकता। इमाम हुसैन को मालूम हुआ कि कबीस उमर बिन साद अपनी पूरी कुव्वत के साथ पीछे से चोरी छुपे हमले का मंसूबा बना रहा है ताकि औरतों और बच्चों समेत सबको कत्ल कर दे और इमाम हुसैन के कैंप को तबाह कर दे। इस तरह के वाक़े से बचाव के लिए कैंप के चारों तरफ एक कंदक खोदी गई थी जिसके सामने एक छोटा सा रास्ता रह गया था। लकड़ी और दीगर दस्तियाब ईंधन को रोशन करके कंदक में फेंक दिया गया। जलती हुई कंदक की गर्मी 3 दिन की प्यास की अजियत में शामिल हो गई। उमर बिन साद के सिपाहियों में से एक ने जवेरिया को बुलाया। इसने तमस्कुर करते हुए कहा कि आए हुसैन के साथियों, यह आग तुम्हें जहन्नम की आग की याद दिलाएगी जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, तुम आग से मेरा ताल्लुक बयान करते हो जबकि मैं अपने खालिक से मुलाकात का बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन ने अपने बाजू उठाते हुए दुआ की कि ऐ परवरदिगार, उस शख्स को इस दुनिया में आग का मजा चखा इससे पहले जो उसका इंतजार कर रहा है। जवेरिया का घोड़ा अचानक शर्मा गया और इसे सीधा जलती हुई कंदक में फेंक दिया जिससे वो राख हो गया। इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास को उमर बिन साद से बात करने के लिए रवाना किया। अब्बास तकरीबन 20 सहाबा के साथ गए। उसने उमर बिन साद से पूछा कि तुमने हमें क्यों घेर लिया है, हुसैन ने क्या जुर्म किया है। उमर ने जवाब दिया कि हमारे सरदार इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया है कि या तो हम यजीद को मुसलमानों का सरदार मान लें और उसकी बैत करें या उसे इन तमाम हामियों समेत कत्ल कर दें। अब्बास ने अपने साथियों को ठहरने को कहा और इब्न साद से कहा कि जब तक मैं तुम्हारा पैगाम ना दे दूं और हुसैन की तरफ से जवाब ना मिल जाए कोई जल्दबाजी न करना। जब अब्बास चले गए तो हबीब इब्न मज़ाहिर ने आसपास की फौज से मुखातिब होकर कहा, तुम एक बदबख्त इजतमा हो जो फातिमा के इकलौते बेटे और रसूलल्लाह के नवासे को कत्ल करने के लिए यहाँ जमा हुए हो। आपको मालूम होना चाहिए कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ हुसैन से मोहब्बत करते थे बल्कि आपको उनसे मोहब्बत और एहतराम का हुक्म भी दिया था। तुम यजीद के कहने पर इकट्ठे हुए हो जो मुनाफिक और गुनाहगार है। उनके वालिद माविया, दादा अबू सुफियान और दादी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते थे और खुल्लम खुल्ला उनके खिलाफ लड़ते रहे यहाँ तक कि उन पर गालिब आ गए और मुसलमान होने का ड्रामा किया। क्या तुम भूल गए कि हुसैन उन 5 हस्तियों में से आखिरी हैं जिनके बारे में अल्लाह ने तस्किया की आयत नाजिल फरमाई है। ज़हीर बिन अलकैन ने कहा कि तुम जालिम और संगदिल लोगों की जमात हो जो शीरकार बच्चों और बूढ़ों और बीमारों को पानी नहीं देते। क्या आपको पानी के लिए बच्चों के रोने की आवाजें नहीं आती? बच्चों ने कौन सा गुनाह किया है कि तुम उन्हें 3 दिन से पानी नहीं दे रहे हो? आप जो कुछ करने का इरादा कर रहे हो खुदा आपको जरूर इसकी सजा देगा। अभी भी देर नहीं हुई, चले जाओ और हुसैन या उनकी कौम को नुकसान न पहुंचाओ क्योंकि हुसैन बेगुनाह हैं। हुजूम में से कुछ इंतकाम के खौफ से खामोश रहे, कुछ इनाम की

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगा हर्ट्स पर सामाईन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। सामाईन, मौसम है बारिश का, बरसात का, और इस बरसात के मौसम में आप भी ज़रा संभल कर रहिए, और चलिए साथ में ज़रूर छतरी या छाता अम्ब्रेला ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस रिमझिम के सावन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो घर से निकलने से पहले हम ज़रूर एहतियात के साथ और तैयारी के साथ निकलना चाहिए।

जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगीं, जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगीं, तो तीन चीज़ों को कभी ना भूलना। गौर से सुनिएगा कि जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगीं, तो तीन चीज़ों को कभी ना भूलना। अल्लाह को जिसने तुम्हें पैदा किया, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको भूला ही नहीं जा सकता, जो सच्चा होता है और जो अपनी औकात जानता है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM मेगा हर्ट्स पर समय आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग और बज़्म सजी है गीत सुरीले गाते जा। अर्ज किया है काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला।

दो चीज़ें आपको डिफाइन करती हैं, दो चीज़ें आपको डिफाइन करती हैं, वो है आपका सब्र जब आपके पास कुछ ना हो, आपका सब्र जब आपके पास कुछ ना हो, और दूसरा आपका रवैया जब आपके पास सब कुछ हो। आपका रवैया जब आपके पास सब कुछ हो तो ये डिफाइन करती हैं आपको कि किस तरह आप सब्र और रवैये में फ़र्क महसूस करते हुए आपको डिफ़ाइन करने की आप खुद अपने आप को कोशिश करते हैं।

मेरे रक्त मेरे हैं रबते ख्यालात में क्या रखा है, मेरे रबते ख्यालात में क्या रखा है, मैं तो पागल हूँ मेरी बात में क्या रखा है, मैं तो पागल हूँ मेरी बात में क्या रखा है, बांध रखा है तेरी याद ने माजी से मुझे, बांध रखा है तेरी याद ने माजी से मुझे, वरना गुजरे हुए लम्हात में क्या रखा है, बांध रखा है तेरी याद ने माजी से मुझे, वरना गुजरे हुए लम्हात में क्या रखा है। मेरी तकमील तेरी जात से ही मुमकिन है, मेरी तकमील तेरी जात से ही मुमकिन है, तू अलग हो तो मेरी जात में क्या रखा है, तू अलग हो तो मेरी जात में क्या रखा है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर समय आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। और स्टूडियो घड़ी में इस वक्त वक्त हुआ है रात के 10:31 और 19 सेकेंड्स। समय बज्म सजी है गीत सुरीले गाते जाके। और अर्ज़ करती हूँ, इख्तलाफात में अखलाकियात को याद रखना आला ज़र्फ़ी है। फिर से कहूँ कि इख्तलाफात में अखलाकियात को रखना आला ज़र्फ़ी है।

समय ना आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नारंग और बज्म सजी है भुलाए नहीं बल्कि गीत सुरीले गाते जा। और बात करते हैं जिंदगी की। जिंदगी एक अनजान किताब सी है, जिंदगी एक अनजान किताब सी है। अगले सफ़े पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता, अगले सफ़े पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। इसीलिए अगर मुनासिब हो तो इस तरह जी लेना चाहिए।

समय ना आप सुन रहे हैं, समय क्राम आप सुन रहे हैं, गीत सुरीले गाते जा। बात करते हैं मेहंदी की। मेहंदी की जब बात की जाती है तो अजीब रिश्ता है इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ इसका, कि खुद तो पिसती है और दूसरों के हाथों को रंग देकर खुशियां मैसर करती है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर समय आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग, और बज्म सजी है गीत सुरीले गाते जाके। जो चिराग सिर्फ अपने लिए जलता है वो आग के सिवा कुछ नहीं, और जो चिराग दूसरों के लिए जलता है वो रोशनी है, नूर है, शऊर का जहूर है। बेशक अपने लिए जलना, अपने लिए करना तो सभी करते हैं, औरों के लिए जलना और करना बड़े दिल वालों की बात है।

सामिन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग और बज़्म यकीनन गीत सुरीले गाते जा की सजी है। वैसे अगर हम बात करें तो मौसम बारिश का है, बरसात का है, तो इस मौसम में हमें अपना और अपनों का ख्याल रखना है और बड़ी ही एहतियात के साथ बाहर निकलना है। जब आप काम के लिए जाते हैं तो उसके लिए वो जो तैयारी होती है, रेनकोट हो या फिर अम्ब्रेला हो, इन चीज़ों को ले जाना ज़रूरी है। और ऐसे शूज़ या ऐसे चप्पल वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप पानी में बआसानी चल सकते हो, ऐसा ना हो कि आप निकल पड़े और फिर आपका जूता, सैंडल, जो भी है स्लीपर, वो हाथ दे जाए। तो बहुत ही एहतियात से आपको बाहर निकलना है, बड़ी ही तैयारी के साथ, न सिर्फ आप बल्कि आपके घर वाले भी। और जब

बच्चे खासकर स्कूल जाते हैं इस बरसात के महीने में, तो एहतियात के साथ उन्हें स्कूल के लिए भेजना होता है, तो इस चीज़ का भी हमें बड़ा ख्याल रखना है। तो सामिन, चूंकि आज 9 मुहर्रम, कल होगा योमे आशुरा यानी कि 10 मुहर्रम, उम्मीद यही करते हैं कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारता है तो उसमें अगर अच्छाइयाँ ज़्यादा शामिल हो जाएं तो फिर अच्छा ही अच्छा होगा। फिलहाल ये जो प्रोग्राम था गीत सुरीले गाते जब यहीं पर ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी हैदराबाद है और अब पेश है बज़्म के आखिर में पयाम-ए-शब, जिसे पेश कर रहे हैं नदीम अख्तर ज़ैदी। आइए सुने।

0: सुना है शहर में जख्मी दिलों का मेला है, चलेंगे हम भी मगर पैराहन रफू करके। जिंदगी की महफिलों में जाने से पहले अपने बिखरे हुए वजूद, टूटे हुए दिल और कमजोरियों को संभाल लेना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजर रहा होता है, इसीलिए अपने जख्मों को नफरत और मायूसी का सबब बनाने के बजाय सब्र, खुद-एतमादी और हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इंसान को अपनी इस्लाह, अपने किरदार और अपनी खामियों को दूर करने पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जो शख्स खुद को संवार लेता है वो ज़िंदगी के हर इम्तिहान का बेहतर अंदाज में सामना कर सकता है।
1: सामिन, पयाम शब अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। इजाजत लेने से कबल बता दूं कि कल यानी जुमा की शब नैरंग की बज में आप समात करेंगे करात कलाम पाक हरफ ताबिंदा एम हाई पेश करेंगे और खसूसी तकरीर योम आशिरा आप सुनेंगे, जिसे पेश करेंगे नदीम अख्तर जैदी और गीत सुरीले का तेजा भी रहेगा और पयाम शब। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत क्योंकि 11 बज चुके हैं। शब खैर। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, चंद ही लम्हों में दिल्ली केंद्र से हम सुनेंगे बारी बारी हिंदी व अंग्रेजी में समाचार और समाचार के बाद दिल्ली केंद्र के प्रोग्राम्स।
2: करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
3: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
4: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
3: And together becoming a force multiplier.
2: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने

0: आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
1: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passport Amendment Rule 2026 will come into force

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत और मैं हूं आपके साथ रितिका।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। जयती आ चुकी है निशिगंधा लेकर स्टूडियो में। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने को प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत कार्यों में भारत की सहायता करने की तत्परता जताई है। सुश्री रोड्रिगेज ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की सराहना की और वेनेजुएला के प्रति एकजुटता के लिए आभार व्यक्त किया। दोहा स्थित भारत

अगर कोई कुम्हार होता, अगर कोई कुम्हार होता और वो सचमुच दो पुतले तोड़कर तीसरी मूर्ति गढ़ सकता, तो वो मूर्ति मैं नहीं बनाती। मैं तो चाहती कि तुम्हारे हाथों की रेखाओं में मेरी उंगलियों की स्मृति रह जाए और मेरी सांसों में तुम्हारे होने की हल्की सी गंध। मिट्टी मिलाने से पहले ही हम दोनों ने एक दूसरे में बहुत कुछ छोड़ दिया है। तुम कहते हो कि तुम्हारी पुरानी ख्वाहिशें मेरे आने से पूरी हो गई, पर क्या तुम जानते हो मेरे भीतर भी एक अनकहा अभाव था जिसका नाम मैंने कभी नहीं लिया। मुझे भी चाहिए था ऐसा मन जहां बिना मांगे ठहर सकूं, ऐसी आंख जो मेरे मौन को पढ़ ले।

और ऐसा स्पर्श जो मेरी थकान से पहले मेरा नाम ले। अगर कोई कुम्हार होता और वो सचमुच दो पुतले तोड़कर तीसरी मूर्ति गढ़ सकता, तो वो मूर्ति मैं नहीं बनाती, तो वो मूर्ति मैं नहीं बनाती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

तुम कहते हो जिंदगी अधूरी होकर भी सच्ची हो तो सुंदर होती है। तुम कहते हो जिंदगी अधूरी होकर भी सच्ची हो तो सुंदर होती है। तो सुनो, मैंने तुम्हारे साथ अपनी अधूरी सच्चाइयों को पूरा होते देखा है। मेरी चुप्पियां तुम्हारे आवाज में अपना घर पा गई हैं। तुम्हारा गर्व मुझे भारी नहीं लगता, क्योंकि वो अधिकार से नहीं संवेदना से उपजा है, और मेरे पास तुम्हारा सुकून और मेरा सुकून तुम्हारे पास किसी वचन की तरह नहीं, एक विश्वास की तरह रहता है। तुमने कहा कुछ पुरुष प्रेम कह नहीं पाते पर लिख सकते हैं। तुमने कहा कुछ पुरुष प्रेम कह नहीं पाते पर लिख सकते हैं। तुम कहते हो जिंदगी अधूरी होकर भी सच्ची हो तो सुंदर होती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है 2 2 4, आवाज है किशोर कुमार की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है हंसते जख्म, आवाज है लता मंगेशकर की।

अरे वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने, जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, आवाज है मोहम्मद रफी की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरी सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरी सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने को प्रतिबद्ध है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब डब्ल्यू

www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपए शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। जो वक्त की धूप से आंखें चुराता रहा, जो वक्त की धूप से आंखें चुराता रहा, उसे अपने ही साए में जलना जरूरी है। जो कल की लकीरों को तकता ही बैठा हो, जो कल की लकीरों को तकता ही बैठा हो, उसे आज की मिट्टी में चलना जरूरी है।

सफर में अगर भीड़ ही रास्ता तय करे, सफर में अगर भीड़ ही रास्ता तय करे तो खुद से अलग राह चुनना जरूरी है। मैंने सीखा है टूट कर भी यही बात कि हर बार नहीं पर बदलना जरूरी है। मैंने सीखा है टूट कर भी यही बात कि हर बार नहीं पर बदलना जरूरी है। हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है जमाने को दिखाना है।

कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं ना कोई गिला बनी, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं ना कोई गिला बनी, बस एक आदत की तरह याद करोगे मुझे। मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, मेरी आंखों से ही सही देखोगे मुझे। ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे, जो कह न सकी सामने वो लिखती रही, भीड़ में भी अलग सी पाओगे मुझे, भीड़ में भी अलग सी पाओगे मुझे, कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है भाभी, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा साया, आवाज है आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मौसम और आवाज है लता मंगेशकर की।

मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था। बड़ा अजीब था वो। मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था। बड़ा अजीब था वो, जो अपने हाथों की लकीरें बदल रहा था वो। मेरे हर शब्द में अपना ही पता ढूंढता था। मेरे हर शब्द में अपना ही पता ढूंढता था। मेरे सवालों से ही उत्तर गढ़ रहा था वो। मैंने जो छोड़ा अधूरा उसी को पूरा समझा। मैंने जो छोड़ा अधूरा उसी को पूरा समझा। मेरी कमी को भी कायदा कर रहा था वो। वक्त ने जब भी हमें आमने सामने रखा, वक्त ने जब भी हमें आमने सामने रखा, घड़ी की सुइयों से आगे बढ़ रहा था वो। मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था। बड़ा अजीब था वो, जो अपने हाथों की लकीरें बदल रहा था वो, जो अपने हाथों की लकीरें बदल रहा था वो। वक्त आ चला है, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं क्रांति फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत द्वारा एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप उठाया गया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने भूकंप से जानमाल की क्षति पर गंभीर संवेदना व्यक्त करते हुए भारत द्वारा राहत कार्यों में सहायता की तत्परता व्यक्त की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्री राम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली SIT ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। राज्य के उत्तर जिलों में भी बारिश की संभावना है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और भूस्खलन हो सकता है। राज्य के उत्तरी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है फकीरा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

चल साथी कुछ लिखते हैं, चल साथी कुछ लिखते हैं, तू लिख दे मेरी हर बातें, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ। चल साथी कुछ लिखते हैं, अदला बदली करके हम तुम शब्दों के महल बनाते हैं, अदला बदली करके हम तुम शब्दों के महल बनाते हैं, मेरा रंग है नीला पीला, तुम लाल सुनहरी ले लेना। मेरा रंग है नीला पीला, तुम लाल सुनहरी ले लेना। मैं गंगा जमुना तट पर नाचूं, तुम सातों छोर समंदर लेना। मैं तेरा गांभीर्य लिखूंगी, तू मेरी चंचलता लिखना, थोड़ी सी अल्हड़ता लिखना, हंसना रोना और मचलना, सब लिखना आहिस्ता आहिस्ता, देखो कुछ भी भूल न जाना। शब्दों की माला गूंद गूंद कर मेरा तेरा मेल सजाना, और मैं तेरी बातें लिखकर साथी पूरी कहानी कर दूंगी। तू मेरी बातें लिख साथी, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ। चल साथी कुछ लिखते हैं, चल साथी कुछ लिखते हैं, तू लिख दे मेरी हर बातें, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मौसम, आवाज है भूपिंदर की।

गुलाब में यादें देकर लौट गया, गुलाब में यादें देकर लौट गया, अपने शहर की ओर मुड़ गया। पीछे छोड़ आया मेरे आंगन में बिखरी हुई खामोशियों की पंखुड़ियां। उसने गुलाब थमाया जैसे किसी ने समय की हथेली पर सुगंध रख दी हो, और कहा कुछ नहीं, बस नजरें झुका ली, जैसे विदा शब्दों से नहीं आंखों से होती हो। वो लौट गया फिर मिलने के वादे के साथ, वादे जो रेल की खिड़की से हवा में लहराते रुमाल से होते हैं, दिखते रहते हैं देर तक पर छूने में नहीं आते। आंखों में आंसुओं का समंदर लेकर मैं खड़ी रही स्टेशन की उस रेखा पर जहां से रास्ते अलग होते हैं और मन एक ही दिशा में अटका रह जाता है। उसका शहर अब मेरे भीतर बसता है, हर गली में उसकी आवाज की परछाई और हर मोड़ पर उसके हंसने की ध्वनि। गुलाब की पंखुड़ियां मेरे किताबों के बीच सूख गई हैं, पर उनकी सुगंध अब भी हर रात मेरे तकिए में लौट आती है, पर उसकी सुगंध अब भी हर रात मेरे तकिए में लौट आती है। गुलाब में यादें देकर लौट गया, अपने शहर की ओर मुड़ गया। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मेरा साया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है भाभी, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वह प्रेम जो शोर नहीं करता, वह प्रेम जो शोर नहीं करता, जो अपने होने का दावा नहीं लिखता, बस अचानक समय की छत फांद कर आ खड़ा होता है दरवाजे पर। हाथों में मेहनत की गर्माहट और आंखों में ठहरी हुई प्रार्थनाएं, कोई घोषणा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ एक उड़ान जिसमें बैठा था विश्वास कि जन्मदिन केवल तारीख नहीं होता, वह किसी आत्मा की स्वीकारोक्ति भी होती है। वो आया जैसे मंदिर में दीप जलाने को आता है, चुपचाप, श्रद्धा से भरा, अपने भीतर की सारी रोशनी लेकर, और लौटा भी उसी मौन में, जैसे दुआ पूरी होने के बाद घंटी बजाए बिना कोई चला जाता है, जैसे दुआ पूरी होने के बाद घंटी बजाए बिना कोई चला जाता है। वह प्रेम जो शोर नहीं करता, जो अपने होने का दावा नहीं लिखता।

0: आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है हंसते जख्म, आवाज है मोहम्मद रफी और बलवीर की।
1: हाय

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें, हमसे थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ और जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है अर्पण, आवाज़ है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: libera o no? उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है।

0: लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2,927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआइरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआइरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली SIT ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ICC महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने 137 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। उसने 16 ओवर और 5 गेंदों में 5 विकेट पर 139 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 3:10 और 30 सेकंड। आप हैं अपने ही दोस्त रूपा धवन के साथ कार्यक्रम, आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम हमराही। हमराही में आपके साथ चल रही हूँ मैं आज, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। नमस्कार।

जी हाँ जनाब, हम तो मान ही गए हैं और आप भी मान ही गए होंगे। जी हाँ, जब हम राही साथ साथ चलते हैं तो एक दूसरे का कहना तो मानना ही पड़ता है और लाजमी भी जो होता है। रात का समा वाकई बहुत खूबसूरत होता है। दिन भर का शोर जब थम जाता है तब रात के इस समय में सुकून के पल और मन में कई बातों और कहानियाँ साथ साथ दिमाग में तैरने लगती है और फिर ऐसे में कोई ना कोई कहानी दिल ज़रूर कहता है। तो चलिए हम भी एक ऐसी ही प्यारी सी खूबसूरत सी ये कहानी सुन लें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ यानी रूपा के साथ, कार्यक्रम है हमराही और समय हुआ है 3:29 रात के। आधी रात और आधा दिन और ये समय बेहद खूबसूरत, बेहद प्यारा हमराही का सफ़र, और साथ चल रहे हैं हम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

हमारे दिलों में उतर जाते हैं। दर्द फिल्म का अभी एक नगमा आपने सुना लता जी की आवाज़ में, और आइए अब सुनते हैं सूरज फिल्म से ये कर्णप्रिय गीत।

दिल में ढेर सारी बातें, नींद आंखों से कोसों दूर है, और ऐसे में जब साथ हूँ मधुर और कर्णप्रिय गीत, तो ये रूहानी गीत सहज ही हम

सूरज फिल्म का ये रूहानी गीत और स्वर थे इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर का। और अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है तीसरा कौन, स्वर लता जी और मुकेश साहब का।

साथियों, रात और चांद का रिश्ता सदियों पुराना है। जब भी ये दोनों साथ होते हैं, जज्बात अपने आप अल्फाजों में ढल जाते हैं। अगर प्रेम कहानी की बात करें तो प्रेम कहानी में चांद की एक अपनी ही खास जगह है।

किशोर साहब और लता जी का ये दिलकश नगमा अभी आपने सुना देवता फिल्म से। जी चाहता है तुमसे प्यारी सी बात हो, जी चाहता है तुमसे प्यारी सी बात हो, हंसी चांद तारे हो, लंबी सी बात हो, और दिल दिल बस सिर्फ और सिर्फ ये कहे।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और लीजिए जनाब, वक्त तो इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है ना कि कब 3 से 4 बजने को आए पता भी नहीं चला। रूहानी संगीत का कुछ ऐसा ही जादू होता है। फिलहाल हम और आप बात कर रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आप हैं अपनी दोस्त रूपा धवन के साथ हमराही कार्यक्रम में। तुझे देखा तो पल में ही सदियां जीली, तुझे देखा तो पल में ही सदियां जीली, तुझे चाहा तो दिल ने धड़कना सीख लिया। इबादत में तो लोग खुदा को ढूंढते हैं, इबादत में तो लोग खुदा को ढूंढते हैं, मैंने तुझको पाकर ही सजदा करना सीख लिया। ये गीत आज के हमराही की आखिरी पेशकश। सुनते हैं यही गीत एन इवनिंग इन पेरिस से मोहम्मद रफी साहब और आशा जी के स्वर में।

जी हाँ, लौटने का वक्त नहीं है अभी। जी हाँ, लौटेंगे दोबारा से, फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और लेकर आएंगे आपकी खिदमत में अरुणिमा कार्यक्रम। फिलहाल रूपा इजाज़त चाहती है, तब तक के लिए विदा दीजिए। और सुनेंगे आप थोड़ी ही देर में, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेज़ी में समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2030 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे।

0: हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद इसे तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यह सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्हें वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन दो शक्तिशाली भूकंप में करीब 2927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआइरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआइरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने में हुई प्रगति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे जोखिम में कमी आई है। IMF की संचार निदेशक जूली कोजैक ने वॉशिंगटन में एक प्रेस वार्ता में कहा कि हाल के संघर्ष से वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती की जांच हुई, पर कमोडिटी बाजार और वित्तीय स्थितियां मोटे तौर पर स्थिर बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, Free Trade Agreement with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, which will enter into force from 15th of next month. Mr.

साथियों, जीवन में सकारात्मक सोच हमारा आत्मबल बढ़ाती है, जीवन को नई दिशा देती है। और हमें क्या करना है, हमें जीवन में इसी आत्मविश्वास और आत्मबल के साथ हर नए सफर को एक नए जोश के साथ आगे बढ़कर जीना है, खुशियों को दोनों हाथों से थामना है। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 4:11:39। आप हैं अरुणिमा में अपने ही दोस्त रूपा धवन के साथ, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। रात के गहन अंधियारे को चीरती हुई सूरज की किरणें धीरे धीरे पृथ्वी पर आ रही हैं और सभी को इस रोशनी में सराबोर कर रही हैं, तो क्यों ना इस जिंदगी से मुलाकात कर ली जाए।

साथियों, रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह की पहली किरण उस पर भारी पड़ती है। जिंदगी की राह को थामने के लिए मजबूत इरादा भी तो साथ होना चाहिए। जी हाँ, तैयार हैं आप मजबूत इरादे के लिए? क्योंकि आज की नई सुबह धीरे धीरे शुरू हो रही है और इंतजार कर रही है आपका, आपके मजबूत इरादे के साथ। चलिए सुनते हैं बुढ़ा मिल गया फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत किशोर साहब की आवाज़ में।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 4:24 और 1 सेकंड। आप हैं रूपा के साथ। तो दोस्तों, कभी कभी हम जिंदगी की आपाधापी में ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो खामोशी से दुनिया को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं, जैसे राह चलते किसी बेजुबान को सहला देना या किसी उदास चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देना। खैर, हमें भी इसी तरह से अपनी राहों पर चलते जाना है और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है।
1: I'm not a man from the past, but I'm functioning. I'm right now. Tomorrow is another day. A wave after wave of excitement comes to me, of new things within me, within myself. As I get up in the morning, at times, if I have a pain or a sorrow, I forget everything.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुणिमा कार्यक्रम में। अरुणिमा है उम्मीद की पहली किरण जो हर रात के बाद नया सवेरा लाती है, हौसलों से जो दिल रोशन रखते हैं जिंदगी भी उनके लिए गीतों को गुनगुनाती है। रूपा के साथ फिलहाल आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आइए

बहुत रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

हर दिन के साथ साथ प्रकृति भी नए रंगों को बुनती है। इसका हर कण एक अलग किस्सा बयां करता है, एक ऐसा किस्सा जिसकी दास्तान हर बूटे पर लिखी होती है और आपकी जिंदगी को हर रंगों में संवारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी रहती है।

सूरज की पीली रोशनी के साथ प्रकृति का कण कण पत्ता पत्ता अपनी अपनी कहानी कहते हैं। रात का सारा खेल प्रकृति की बाहों में समा जाता है। वहीं कलकल करते झरने भी अपनी बातें बताते हैं।

राजा हो या रंक, सभी को अपने जीवन में जिंदगी के उतार चढ़ावों से गुजरना ही पड़ता है, मुश्किलों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र और तारामती जी की फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी साहब के स्वर में जीवन की एक कड़वी सच्चाई को बयां करता ये गीत, बेहद ही खूबसूरत आवाज़ में बखूबी दर्शाया, दिखाया शब्दों द्वारा मोहम्मद रफ़ी साहब ने। साथियों, लेकिन ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा अपना भी होता है जो आपके सुख दुख में आपकी छांव बनकर चलता है, आपका साया बनकर चलता है। कोई ना कोई तो किसी ना किसी के जीवन में ज़रूर होता है।

जिंदगी है तो हार जीत का खेल भी चलता ही रहता है। मुश्किलों का सामना करना मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं। जहां मुश्किलें हैं वहां मुस्कुराहटें भी हैं और जीत की खुशी भी है, उमंगें भी हैं।

खुशनुमा बहार के साथ हमारे मन में नई उमंगों को जगा देती है ये बहार। ठंडी हवा के झोंके मानो कानों में मुस्कुराकर कुछ कहकर आगे बढ़ जाते हैं, आने वाले पल का स्वागत करने का संदेश दे रहे हों जैसे।

अरुणिमा से विदा लेती है रूपा, फिर से भोर सुहाने में आपके साथ मुलाकात होगी जल्दी ही। तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड, और कुछ ही देर में सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सेशल्स जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 10वीं बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की बैठक में

0: केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज मादक पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की भविष्य की योजना प्रदान करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच में ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिग्स ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकस से लगभग 160 किलोमीटर दूर 7.5 की तीव्रता के इन दो शक्तिशाली भूकंप में करीब 2,927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकस के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं या नष्ट हो गई हैं। इस बीच वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत द्वारा एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप उठाया गया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध विराम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने में हुई प्रगति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट में कमी आई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान और स्वीडन तथा ट्यूनिशिया और नीदरलैंड का मैच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The PM added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. PM Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. PM last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermione, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK comprehensive economic

सुबह की लाली माँ हमें याद दिलाती है उस जीवन की शक्ति को जो संघर्ष और पीड़ा के क्षणों में भी मौजूद रहती है। मृत्यु और जन्म, दुख और प्रसन्नता, निराशा और आशा के साथ सहज ही संवाद करती है। और हम संवाद कर रहे हैं आपके साथ, जी हाँ, आप ही के अपने चैनल, जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

स्वागत है आप सभी के साथ। सूरज के रथ को सुनहरी किरणें धीरे धीरे सुजज्जित करते हुए आज के नए दिन का आरंभ कर रही हैं, तो हम भी आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। कार्यक्रम है भोर सुहानी, और भोर सुहानी लेकर आपके साथ हूँ, आप ही के पास हूँ, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। तो आइए उस प्रभु का भी स्मरण कर लें आज सुबह की शुरुआत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल दिल्ली के एफएम पर. जी हाँ, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. और बहुत सुहानी लेकर आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन. तो जनाब, जिंदगी का जो पर्चा है ना, जिंदगी की रंगीन किताब को रंगीन बनाने के लिए, रंगों से भरने के लिए, उजालों के साथ अदम्य साहस ही नहीं, कभी कभी छोटे छोटे प्रयास भी कारगर सिद्ध होते हैं. जब आप खुश होते हैं तब अपनी प्रकृति के साथ साथ अपनी प्रकृति का कण कण भी देखिए. जी हाँ, प्रकृति का कण कण भी आपकी खुशियों का हिस्सा बन जाता है. कैसे झिलमिल झिलमिल करते हुए तारे आपके साथ साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलते हैं.

जब बाहरी ताकतें हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं ना, तब हमारी जिंदगी का संतुलन ही हमें संभालता है। जी हाँ, आपका कितना संतुलन है अपने जीवन पर? क्या आप छोटी छोटी बातों पर गमगीन हो जाते हैं, दुख से भर जाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो चलता ही है जनाब। हम भी तो, जब हमें दुख आता है तो हम भी तो कभी कभी गम में डूब जाते हैं। थोड़ा सा उदास तो हम हो ही जाते हैं। भाई इंसान हैं तो इंसान के अंदर जो भाव है ना, वो उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। लेकिन हाँ, हमें अपनी उदासी को इतना गमगीन नहीं कर देना चाहिए कि हम ये भी भूल जाएं कि हमारे जीवन के साथ साथ और भी लोग जुड़े हैं, हमारे कुछ अपने अपने ख़ास जो दिल के बहुत करीब हैं, जो हमें दुखी देख कर खुद भी दुखी हो जाते हैं। तो चलिए जनाब, यही तो जीवन का फलसफा है। और फलसफा सब कुछ हमारे हाथ में ही है, हम टिमटिमाते दिए की तरह जलें या फिर बुझ जाएं। पर बुझे क्यों जनाब, हम तो गम छोड़कर खुशियों को मनाएंगे और खूबसूरत से गीत गाएंगे।